माता की आशीष, निमख न बिसरो तुमको हर हर, सदा पजो जगदीश। धन वह गुरु साहब जी, राग तनासरी बाणी भगत कबीर जी की। एक ओंकार सत गुर प्रसाद, सनक सनंद महेश समाना, शेख नाग तेरो मर्म न जाना। सनक सनंद महेश समाना, शेख नाग तेरो मर्म न जाना। संत संगत राम हृदय बसाई रहाओ,

चार वेद अर सिमरत पुराना, कमला पात कवला नहीं जाना। कह कबीर सो पर मैं नाही, पागलाग राम रह शरणाही। कह कबीर सो पर मैं नाही, पागलाग राम रह शरणाही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे, गुरु प्यारे, गुरु सवारे, अति सत्कारयोग सतसंगी जनों, वडभागे हां सेवक परिवार, भाई गुरविंदर पाल सिंह, बीबी हरप्रीत कौर परिवार वालों बच्ची सुप्रीत कौर दे 21वें जन्मदिन नूं मुख रखदिआं, अते काका जसराज सिंह दी चढ़दी कला नूं मुख रखदिआं, श्री सुखमणी साहिब जी दे पाठ आरंभ करवाए गए सन। अकाल पुरख वाहिगुरु जी दी अपार बख्शिश रहमत होई, निर्विघ्नता सहित समाप्ति उपरंत परिवार दी, बच्चियां दी, चढ़दी कला दी अरदास विच आप संगतां ने शमूलियत कीती है। इस मौके ते सतगुरां ने जो पावन मुख वाग दी दात बख्शिश कीती है, पवित्र उपदेश आप संगतां ने सरवण कीते हन। परिवार वल्लों आईआं होईआं समूह संगतां दा तहि दिल तों धन्नवाद है, जिन्हां ने परिवार दे सदे पत्र ते पहुँच के परिवार दा माण वधाया है। आईआं होईआं समूह संगतां वास्ते परिवार वल्लों गुरु के लंगर तैयार करवाए गए ने। आप संगतां ने कड़ाह प्रसाद की देख लैण उपरंत गुरु के लंगर विचों प्रसादा छक के जाण दी कृपालता करनी जी। सेवक परिवार अगे बेनती है, बच्ची सुप्रीत कौर उन्हां वास्ते गुरद्वारा साहिब वल्लों एक सर्टिफिकेट तैयार किया गया है, जिस भी बच्चे का जन्मदिन गुरद्वारा साहिब विखे धार्मिक रोह रीति मुताबक मनाया जाए, उस नूं सर्टिफिकेट दे के सन्मानित किया जाता है। मैं बच्ची नूं बेनती करांगा उस स्टेज ते आके सर्टिफिकेट प्राप्त करन दी कृपालता करन जी। तुसीं ताबिया ते आ जाओ बीबी जी, बीबी जी, माता जी, तुसीं इत्थे आ जाओ।

हाँ जी, परिवार वालों जो समागम करवाए गए सन उन्हां दी इत्थे समाप्ति है। हुण दूसरे परिवार वालों श्री सुखमणी साहब जी दे पाठ आरंभ होणगे। आप जी जिन्नी देर तक चाहो दीवान हाल विच बैठ सकदे हो, और उपरंत आप संगतां ने गुरु के लंगर विचों प्रशादा छक के जाण दी कृपालता करनी जी। इन्हां शब्दां दे नाल आप समूह संगतां दा तहे दिल तों धन्नवाद है जिन्हां ने शिरकत कीती है और परिवार दा माण वधाया है, और सेवा निभाउंदियां होईयां बेअंत भुल्लां चुक्कां दी खिमा। गुरफतेह परिवार नूं आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।

पूरा कहाँ बिसन पद काबे कुंग जतन करै तो पी सुरपंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तू आस गवन करतार करुणा मैं दीन पिनती कर नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाई सुआपे न चीत जो पैराई तां सो प्रीत बलुआ के ग्रह भीतर बसै आनंद केर माया रंग रसै दृढ़ कर माने मने प्रतीत काल ने आपे मूड़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालो त्रो ये आहो जो प्याने के जन्म नानक राख लिहो अपन कर कर्म तू ठाकर तुम पे अरदास जियो पिण सब तेरी रास तुम मार पिता मुबारक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख नेरे कोई न जाने तुमरा अंत उचे ते उचा भगवंत सगर समगरी तुमरे सूत्र तारी तुम ते हुए स्वाज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी सलोक दीन हर प्रभ छोड़ कै लग ही अनसवाय नानक कहू न सी जाई पिनाए पचैट पदी दस बार तूले पाछे पावे एक बस्त कारण बखूट गवावे एक पीना दे दस पीहर ले तो मूड़ा कहो का करे जिस ठाकुर सो नाई चारा ताको की जय सद नमस्कार जाके मन लाका प्रमीठा सर्व सुख ताहु मन बूटा जिसने अपना हुक्म बनाया सर्व थूक नानक तिन पाया अगणत साहु अपनी देरास खाद पीत बरते अंधे उलास अपनी मान कश बहर साहु ले अज्ञानी मन रुस करे अपनी प्रतीत आप ही खोपै बहर उसका विश्वास न होपे जिसकी बस्त से आगे राखे प्रभु की आज्ञा माने माथै उसते चौगन करे निहार नान साहिब सदा दयाल अनक भांत मा के हेत सर पर होव जान नेत बैरख की छाया सो रंगला पे ओ बिनस ए ओ मन पछतावे जो दिसे सो चालन हार लपट रहे हो त्यान देंदा पटाओ सो जो लापे ने ताको हाथ ने आवे के हे

आप जपे जब सोए, आप जपाए जपे सुनाओ, आप गवाए सुहर गुण गाव। प्रभु कृपा ते होए प्रगा, प्रभु दया ते कमल बिगास। प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए, प्रभु दया ते मत उत्तम होए। सार पुन दान प्रभु तेरी मया, आपो कछु न किन्हू लिया।

अब न पीखे कस बिन कोई। नानक एह लचन ब्रह्म ज्ञानी होया पदे। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जन्मे कवन अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्तोख जैसे सुर सर को सोख। ब्रह्म ज्ञानी के दृष्टमान जैसे राज रंग को लागे तुलपवा। ब्रह्म ज्ञानी कर तीजे क जो बस्ता को खुद को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी काय कनाव नानक चु पाव का सहस पाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लाके चला। ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रकाश जैसे तारे ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान। ब्रह्म ज्ञानी के नाई पमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊते उच्चा मन अपने सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पे नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सर किरीना आत्म रस। ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया। ब्रह्म ज्ञानी ते काश बुरा न पहया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता। ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन क्या नान। ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म त्या। ब्रह्म ज्ञानी एक उप्रयास। ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश।

सो फल फला ब्रह्म ज्ञानी संसार उतार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सो संसार ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसे प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परिवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सत जागत ब्रह्म ज्ञानी अहम भूत आदि ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के घर सदानंद ब्रह्म ज्ञानी सो सहज निवास नान ब्रह्म ज्ञानी का नहीं बिनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी कह हुए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़भागी पाइये ब्रह्म ज्ञानी को बर बर जाइये ब्रह्म ज्ञानी को खोज है महेश्वर नान ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाय ब्रह्म ज्ञानी के सल मन माय ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देस ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाय अदाखिर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर ब्रह्म ज्ञानी की मृत कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पा नान ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता ब्रह्म ज्ञानी साध जीपे नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुख बधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सर्व प्रहात ब्रह्म ज्ञानी का सर्व कार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार।

दास प्रभु की आज्ञा आत्मे तावे जीन मुक्ता सो कहावे तैसा हरक तैसा सो सदा आनंद तै नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो

समाय प्रभावे मानक गत पाए प्रभावे ता पाथर तराय प्रभावे बिन सार तेरा के प्रभावे ता हर गुण पाखे।

कबहू महा क्रोर बिकरा, कबहू सर्व की होतर बा, कबहू हुए बह बड़राजा, कबू पिखारिनी का साजा, कबहू अब कीत में आवे, कबहू पला पला कहावे, जो प्रवरा खेत भी रह। गौर प्रसाद नानक सच कह, कबहू हुए पंडित करे बख्यान, कबहू मोन तारी लावे ध्यान, कबहू तट तीर्थ स्नान, कबू सिद्ध साधक मुखियान, कबू कीट हस्त पतंग हुए जिया, अनक जोन परमे परमिया, नाना रूप जो सुवागी दिखाए, जो प्रपाए तेवे नचावे, जो तस पाए सोई हुए, नानक तू जाव न कोय, कबू सार संगत यो पावे, सस्तान ते बो न आवे, अंतर हुए ज्ञान प्रकाश, उस स्थान का नहीं विनाश, मन तन नम्रते करंग, सदा बसे पर ब्रह्म के संग, ज्यो जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सतगुर पान सलोक, सुखी

अर्पदे जिसके अंतराज पान सो नरक पाती हो स्वान जो चाने मैं चून पंत सोहत बेटा का जंत आपस को कर बंद कावे जन्म मरे भोजन प्रमावे तन भूमका जो करे कुमार सो मूर्ख अंधा ज्ञान।

का रूप नरेख नरंग किस त्रिकोण ते प्रभ पिन तिसे बजाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न अटपदे अविनाशी प्रमन में राख मन की तू प्रीति आत स्थे परे नाई किस कोए।

इहो निराव मनसा पूर्ण सरणा जोक जो कर पाया सोई होक। हरण भरण जाका नेत्र फो तिसका मंत्र न जाने होर।

अवतार करण कारण सो प्रसमरत दृढ़कार गहो नाम हरबत एहो तन संचो होवो भगवान संजना का निमरमंत एक आस राखो मन माए सर्वरूक नानक मिट जाए जिस तन को चार कुंट उठता वे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख कौन तबाचे मीत सो साधु संग प्रीत जिसो बाको करे परी करणी सा सुबह पर हर की सरणी अन क्यों पावी रूक न जाए रूक मिटे हर खदलाए सर्वन दान में हर नाम तान जप नानक धरगे प्रवान मन पर बुद्ध हर के नाय दहद सताव त्या बिठाए ताको बिघन डागे कोय जाकर दे बसेर सोए करता ती ठांडा हर नाम सिमर सिमर सुदान सोपा पौ बिन सह पूर्ण हो आत पत पाए आत्म प्रगाज तित कर जाय बसे अबनासी कहु नानक काटी जम्फासी तत् विचार कहे जन साचा जन्मरे सो काचू काचा वा गौन पिटे प्रसेव आप त्याग सन गुरदेव उन जन्म का हुए उदार हर हर सिमर प्राण उदार अनक उपावन छूटन हारे सिमर साध वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंचत नान पल पाए संगन चार तेरे तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुत मीत कुटांबर बनता ते कहो हो तुम कौन सुना था राज रामा विस्तार इन ते कहो हो कौन छुटकार आसा तीरथ सपारी झूठा डंप झूठ फसारी जिंदी है तुस बुझे ना बिगाना ना बसार नान पिस्ताना गुर की मत तू दे आने पथ पे ना बो डूबे सियाने हर की पात करो मन मीत निमर हुए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माए जन जन्म के करुख जाए आप जपो अवरा नाम जपा सुनत कहत रहत गर पाव रहत गत पावो सारपूत साच सत हर नाम सार पूत सतर को ना सहस पाए नान गुन गाव त्रितर समैल बिनस जाए हुमे बेख फैल हुए चंत बसे सुखनार सास करा सर नाम समाल शाड स्याम सरी मना सास संपावे सतना हर पूंजी सांचे करो बिहार इहां सुख दरगे जयकार सर्पन नंत्रे को देख कोह नानक जाके मस्तक लेख एको जाप एको सलाय एक सिमर एको मन आय

एच पुनी सरदा सा पूरी हरा पर हिया सा संग हजूरी जिसका साथ निया मिलाए नानक भक्ति ना समाए सुकम बिसरै जे काल न पाने सुकम बिसरै जे किया जाने सुकम बिसरै दिन सब कर दिया सुकम बिसरै जे जीपन जिया सुकम बिसरै जे अगन में राखे गुर प्रसाद को बिरला राखे सोकम बिसरै जे व्यक्ति काट डाय जन्म जन्म का टूटा गांड गर पूरे।

को किस को गनी। जब एक हर एक पा तब नरक स्वर्ग को कौन उतार। जब निर्गुण प्रसह सुपाई तब शिव सक्त कहो हो के ठाई। जब आपे आपे अपनी जोत रह तब कवन निडर कवन का डर। अपन चलते आप करने हार नानक ठाकुर में पार। अविनाशी सुख अपने आसन ते जन्म मरण कहो का विनाशन। जब पूर्ण करता प्रसोए तब जम की त्रास कहो हो किसोए। जब अवगत गोचर प्रविका तब चितर गुप्त कृपूत रेखा। जब नात निरंजन गोचर गा दे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। अपने आप आप ही चर जा नानक अपने रूप आप ही उपर जा। जय निर्मल पुरख पुरख पहुता तय पिन मैल कहो हो क्या तूता। जय निरंजन निरंकार निरपान तय कौन कुमान कौन अभिमान।

आए। तुम ते पिन नहीं किछ होए अपन सूत, सब जात परोए जाको प्रभु जी आप जाए, सच नाम सोई जन पाए। सो समदर्शी तत् कबीता, नानक सगल सिड़का जेता, जी अजंतर सबता केहा, दीन दयाल अनाथ को नार। जिसरा के दिल कोई न मारे, सो मुआ जिस मनो बसारे, तिस तरी अवर कां को जाए, सब सरेक निरंजन राय। जी के जोगत जाके सभा, ते अंतर बार जानो साथ, गुण तान बेअंत पार, नानक दास दा बलहार। पूरन पूरे दयार सब उपर होत कृपाल, अपने करतब जाने आप, अंतर जा मीरो ब्याप। प्रित पाले जीअन पोपा, जो जो रचियो सुत सह त्या, जिस पावे तिस रहे मलाए, भगत करे हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मानिया, करण हार नानक इक जानिया, जन रा कर कै नाए, तुकी आसन बिरथी जाए, सेवक को सेवा बनाए। हुकम बूझ परम पर पाए, इस ते उपर नहीं विचार, जाके मन बसिया निरंकार। बंधन तोर पै निरपैर, अंदर पूजे हे गुर के पैर, ए लो

जोजो होए सोई सुख माने, कर्ण करावन हर प्रभ जाने। अंदर बसे बार पियो हे नानक दर्शन दे समोए। आप सत किया सब सत, ते प्रभ ते सगली उत्पात, ते पावे तां करे विस्तार, ते पावे तां एकंकार।

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरों श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ध्याइये, जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कर नौ निधावे ताए, सब थाई हुए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी, सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तर के बोलो जी। पंजा प्यारिया चौहान साहबजादिया चालिया मुक्तियां हठिया जपिया तपिया, जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया। देख चलाई तेग वाही, देख के अंडिठ कीता तना प्यारिया सच्यारिया दी कमाई दा ध्यान तर के बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस ते बंद बंद कटाए, खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़ियारियां नाल चराए गए। गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुआसां नाल निभाई, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान तर के बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान तर के बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, चित आवै चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत, देग तेग फतेह बिरध की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाए, खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान, केस दान रहत दान, विवेक दान विसाह दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान। श्री अमृतसर जी दे इशनान चौंकियां, झंडे बंगे जुगो जोगे अटल, धर्म का जयकार खालसा जी बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मादा राखा आप, वाहेगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तर जियो। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे, जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हिन माणियां दे माण। नितानियां दे तान निवटियां दी ओट, सच्चे पिता वाहिगुरु आप जी दे पावन पवित्र चरण कमलां पास। अरदास बेनती जोदड़ी प्रार्थना है गरीब नवाज पातशाह जीओ। दर घर दे प्रीतवान सेवक परिवार, भाई कुलतार सिंह बेदी, भाई बलजीत सिंह लखमान, भाई गुरनीत सिंह लखमान अते पुनीत सिंह लखमान परिवारां वल्लों, स्वर्गवासी भाई हरभजन सिंह नागपाल नागपाल, तिन्हां दी मिठी याद नूं मुख रखदिआं होइआं सेवक परिवारां ने रल मिल के तुरकी बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई, श्री सुखमणी साहब जी की पावन बाणी दे पाठ आरंभ करवाए सन पातशाह जीओ। आप जी की महान कृपा हुई है, निर्विघनता सहित समाप्ति उपरंत आनंद साहब छे पौड़ियां दी अरदास समुची सेवा निभाउंदिआं होइयां बेअंत भुल्लां चुकां दी खिमा अगांह तों समत बख्शिश करनी, विछड़ी हुई रूह नूं चरना चनवास बख्शिश करना, परिवार नूं भाणा मनण दा बल बख्शिश करना, परिवार दे सिर ते मेहरां भरिया हथ रखना, दुखां कलेशां दरिद्रां विघनां दे नाल सुखां दे प्रकाश चढ़दियां कला दरों घरों गुरसिखी जीवन नाम दी दात दे के नवाजना, मनोकामनावां शुभ भावनावां गुरमत अनुसार पूरियां करनियां, काम क्रोध लोभ मोह हंकार तों बचा के सत संतोख दया धर्म धीरज दीयां दातां बाणी बाणे नाल गुरु दर दे नाल प्रेम प्यार बख्शिश करना पातशाह जीओ। इन्हां समयां नूं मुख रखदिआं सेवकां वल्लों आप जी नूं सुंदर पोशाक के भेट कीते गए, आप जी ने अंगीकार कीते हन पवित्र हजूरी दे अंदर, कड़ा प्रसाद दी देग हाजर है, दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शिश करनी कृपा करो। पावन हुक्म दी दात बख्श के समूह संगत नूं निहाल करो, अखर वाधा घाटा भुल चुक माफ करनी, सरबादे कारज रास करने सही प्यारे मेल, जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेता वे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा गया पई अकाल की तवै चलाए, सब सिखन को हुक्म है गुरु माने, गुरु ग्रंथ जी माने ओ प्रगट गुरां की।

साहिब जी, राग सोरठ बाणी भगत रविदास जी की। एक ओहंकार सत गुर प्रसाद, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। अनल अगम जैसे लहर मयो दध, जल केवल जल माही। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। अनल अगम जैसे लहर मयो दध, जल केवल जल माही। माधवे क्या कहिए प्रमैसा, जैसा मनिए होए न तैसा रहाओ। नरपत एक सिंहासन सोया।

राज प्रियंग प्रसंग जैसे हैं अब कश मर्म जनाया। अनक कटक जैसे फूल परे अब कहते कहन न आया।

जल केवल जल माही माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा जैसा मानिए होए न तैसा रहाओ। नरपत एक सिंहासन सोया सुपने भया भिखारी अछत राज बिशरत दुख पाया सो गत पई हमारी राज पुयंग प्रसंग जैसे हैं अब कश मर्म जनाया अनेक कटक जैसे भूल परे अब कहते कहन न आया सर्वे एक अनेक स्वामी सब घट भुगवै सोई कह रविदास हाथ पैने सजे होए सोई सर्वे एक अनेक स्वामी सब घट भुगवै सोई कह रविदास हाथ पैने सजे हुए सोई वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज गुरु साहब जी के मुबारक चरणों के विच दरबार दी हाजरियां भर रही जुड़मल बैठी गुरु प्यारी माणयोग साध संगत वड़भागे हाँ जो गुरु दरबार अंदर जुड़मिल बैठन का सुभाग समा प्राप्त होया। धन्यवाद सत्कारयोग ढाडी जथे का माणयोग ज्ञानी राम सिंह जी रफ्तार ते उन्हां दा ढाडी जथा आप जी के सन्मुख ढाडी वारां गुरु इतिहास आप जी नूं सरवण करवा रहा सी। धन्यवाद तुहाडा वी है वैसे जिथे जथे का धन्यवाद है तुहाडा वी धन्यवाद है तुसीं बैठे हो जथे नूं सरवण किया है माण सन्मान भी किया। वैसे ये एक त्रासदी है खिमा करना वैसे तो चलो हर एक बंदे की एक मेहनत होंगी है। माणयोग भाई साहब भाई लखविंदर सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री दरबार साहब अमृतसर जो अपने पास तुम जानते हो कि लगभग पिछली 15 तरीक तो वो हाजरियां भर रहे हैं 23 तरीक तक उन्हों की हाजरी है शाम को डेली दीवान के उन्हों की हाजरी होंगी है। आप जी ये भी जानते हो कि कल न श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा साहब की नवी इमारत का नींह पत्थर समागम है जो कि दोपहरी 12 बजे के करीब करीब पंजा प्यारियां की अगवाई दे विच समागम संपूर्ण होंगे तो दोपहर के दीवान विच भी भाई साहब जी ने हाजरी भरनी। मैं बेनती यह कर लगा साहब ये उन्होंने एक अपनी बंदगी है संगत उन्होंने सुनने वास्ते आँदी है संगतों में उन्होंने प्रति बड़ा प्यार है बड़ा सत्कार है बड़ा बड़ा उत्साह है पर गुरु प्यारे इतने जथे अपने पास जिन्हें भी आते हैं संगत वास्ते आते ढाडी जथा बहुत बार इंज लगता भी जिवें ढाडी जथा ना हो के फाडी जथा होवे अखीर ते जथे की वारी हुंदी है तो बहुत ही बार इंज हुंदा भी बस जथे दे सिंह ही गाउण वाले हुंदे तो सुनण वाले भी उही हुंदे है चंद कुरूआं चंद कु शरीर अंदर बैठे हुंदे ने ते दीवान हाल वेला हो जांदा उस वेले तो ये ठीक है कम्मां धंदियां दे दिन ने वैसे चलो खैर कल नूं ते वैसे छुट्टी है पर जिन्हें भी जिहड़ा भी जथा लगता है जो भी बनता मान सम्मान तो जिथे उन्होंने सरवण करिए उ उन्होंने बनता जो मान सम्मान वो भी जरूर आप करना है। धन्यवाद है तुहाडा आप जी बैठे हो तो मान सम्मान किया है ये जथा कल का दिन संडे की हाजरी इन्हें आखिरी हाजरी है परसों इन्ह की मुल्क पंजाब की वापसी है। इंशाला फिर बेनती करते हैं अकाल पुरख वाहगुरु सच्चे पातशाह मेहर करे फिर इस तरह आन हाजरियां भरन ढाडी वार आप जी ने सरवण करवाने जथे का धन्यवाद है। तो गुरु चरणों में दवान की समाप्ति की अरदास हुई है बख्शिश
ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਆ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ, 2 ਨੰਬਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਨੰਬਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਆਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਨੰਬਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਆਖੰਡ ਪਾਠ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਰੰਭ ਹੈ, ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਆਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਪਰੰਤ ਇੱਥੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਾਸਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰੁਕੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹਵਨ ਸੰਗਤਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

कबीर माए मुंडो तेह गुरु की जाते भरम न जाए। आप डुबे चहबेद मह चेले दिए बहाए। कबीर जेते पाप किए राखे तले दोराए। प्रगट भये निदान सब जब पूछे धर्म राय।

कबीर हर का सिमरन छाड़ के रात जगावन जाए। सरपण होए कै उतरे जाए अपने खाए। कबीर हर का सिमरन छाड़ के अहोई राखे नार। गद ही होए कै उतरे पार सहे मान चार। कबीर चतुराई अत घणी,

कबीर सोई मुख तन है, जा मुख कहिए राम, देही किसकी बापुरी, पवित्र होए गो ग्राम। कबीर

बैन चरो तो नाम जी चरण कमल रिद ठाओ। कबीर सुरग नरक ते मैं रहयो सतगुर के प्रसाद। चरण कमल की मौज मह रहो अंत अर्याद। कबीर चरण

कबीर देख कै कहे कहो कहे ना को पतियाए। हर जैसा तैसा ओहि रहो हर खुगुन गाए। कबीर चुगै चितारे भी चुगै चुग चुग चितारे। जैसे बचरे कूंज मन माया ममतारे। कबीर अंबर कन हर छाया बरख परे सरताल। चातरक ज्यों तरसतर है तिनको कौन हवाल। कबीर चकोई ज्यों निस बिछरै आए मिलै प्रभात। जो नर बिछरे राम स्यों ना दिन मिले ना रात।

पाछै कछु न होएगा ज्यों सिर पर आवे काल। कबीर ऐसा जन तिक देखिया जैसीत हुई लाख, दिसे चंचल बहु गुणा मत हीणा न पाक। कबीर मेरी बुद्ध को जम न करे तिसकार, जिन्ह जमुआ सिर जिया सो जपिया पर्वतगार। कबीर

कबीर साकत ते सूकर फला राखे आचा गाऊं हो साकत बपरा मर गया कोई ना लह नाऊं।

चाहिए। जैसा हर ही होए, ऊंच पवन कन कामनी, शिखर तजा फहराए, ताते पली मधुकरी, संत संग गुण गाए।

कबीर गंग जमन के अंतरे सहज सुन के काट तहां कबीरे मट किया खोजत मन जन बाट। कबीर

कबीरा वेख चंपाओ देखियो हीरा हाट बिकाए, बनजन हारे बाहरा कौडी बदले जाए। कबीरा जहां ज्ञान तहां धर्म है, जहां झूठ तहां पाप, जहां लोभ तहां काल है, जहां खिमा तहें आप। कबीर माया तजी ता क्या पया, जो मान तजिया नहीं जाए, मान मुनि मुनीवर गले, मान सबै को खाए।

एक कबीर साचा सतगुर क्या करे, जो सिखा मह चूक, अंधे एक ना लगई, जो बांस बजाइए फूक। कबीर है गए बाहन, सकन कान छत्रपति की नार। तास पटंतर ना पुजे, हर जन की पनिहार। कबीर नृप नारी क्यों निंदिए, क्यों हर चेरी को मान। ओह मांग सवारे भिखै को, हो सिमरै हर नाम। कबीर थूनी पाई थित पई, सतगुर बंदी धीर। कबीर हीरा बन जिया, मान सरोवर तीर। कबीर हर हीरा जन जौहरी, लेके मांडे हाट, जब ही पाइये पारखू, तब हीरन की साट। कबीर काम परे हर सिमरिय, ऐसा सिमर हो नित। अमरापुर बासा करहो, हर गया बहोरे बित। कबीर सेवा को दोए भले, एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्त को, संत जपावे नाम।

कबीर संसा दूर कर कागद दे बिहाई, बावन अखर सोध कै हर चरनी चित लाए। कबीर संत न छाड़े संत, ई ज्यों कोटक मिलहे असंत। मलयागर पयंगम बेड्यो तां सीत लता नात जंत। कबीर मन शीतल भया, पाया ब्रह्म ज्ञान। जिन ज्वाला जग जा रिया, सो जन के उदक समान। कबीर सारी सिरजनहार की, जाने नाही कोय। कै जाने अपन धनी, कै दास दीवानी होय। कबीर भली भई जो भव परया, दिसा गई सब भूल, ओरा गरपानी भया। जाए मिलो ढल कूल, कबीरा धूर सकेल कै, पुरिया बांदी देहे। दिवस चार को पिख ना अंत खेह की खेह। कबीर सूरज चांद कै, उदय पई सब देह। गुरु गोबिंद के बिन मिले, पलट पई सब।

कबीर मारे बहुत पुकारिया, पीर पुकारे और लागी चोट मरम की, रहे कबीरा ठाओर। कबीर चोट सहेली सेल की, लागत ले उसास, चोट सहारे शब्द की, तास गुरु मैं दास।

सेख सबूरी बाहरा, क्या हज का बह जाए कबीर, जाकी दिल साबत नहीं ताको कहां खुदाए। कबीर अल्लाह की कर बंदगी, जेह सिमरत दुख जाए। दिल में साई प्रगटे, बुझे बुलंती नाए। कबीर जोरी किए जुल्म है, कहता नाओ हलाल। दफ्तर लेखा मांगी है, तब होइगो कौन हवाल। कबीर खूब खाना खिचड़ी, जा मह अमृत लोन। हीरा रोटी कारने गला कटावे कौन।

कबीर रामे राम कहो कहबे माहे बबेक, एक अनेक हे मिल गया एक समाना एक। कबीर जा कर साधना सेवी है, हर की सेवा नाहे, ते कर मरहट सा रखे भूत बस हे तिन माहे। कबीर गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान,

कबीर सतगुर सूर में, बाहे आबान जो एक, लागत ही पोए गिर परिया, परा करे जे छेक। कबीर निर्मल बूंद आकाश की, पर गई भूम बेकार। बिन संगत यो मानई, होए गई पाठ छार। कबीर निर्मल बूंद आकाश की, लीनी भूम मिलाए, अनक से आने पच गए, ना निर्वारी जाए। कबीर हज काबे हो जाए था,

कबीर जिया जो मारहे जोर कर, कहते है जो हलाल। दफ्तर दई जब काट है, होएगा कौन हवाल। कबीर जोर किया सो जुल्म है, ले जवाब खुदाई। दफ्तर लेखा निक सै, मार मोहे मोहे खाए। कबीर लेखा देना सुहेला, जो दिल सूची होए, उस साचे दीवान में पला न पकड़े कोए। कबीर धरती अरे आकाश में है, दोए तू बरी अबद। खाट दर्शन संसे परे, अर चौरासी हसिद। कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं,

मानोरथ कोई ना पूरयो, चाले उठ निरास। कबीर हर का सिमरन जो करे, सो सुखिया संसार। इत उत कतहि ना डोलई, जिस राखे सिरजनहार। कबीर कहानी पीड़ते, सतगुर लिए छड़ाए। परा पूर्बली पावनी, प्रगट होई आए। कबीर टाले टोले दिन गया, ब्याज बढ़न तो जाए।

कबीर कुकर पौंकना करंग पिछै उठताए। करमी सतगुर पाया जिन्हों लिया छड़ाए। महला पंजवा।

कबीरा हमरा को नहीं हम किस हूं के नाहे, जिन हे रचन रचाया तिस ही माहे समाहे। कबीर की चढ़याटा गिर परया किछु न आयो हाथ, पीसत चाबिया सोई न बिहा साथ। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही औगण करे, काहे की कुशलात हाथ दीप कुए परे। कबीर लागी प्रीत सुझान स्यों, बर जाय लोग अजान, ता स्यों टूटी क्यों बने जाके जी प्राण। कबीर कोठे मंडप हेत कर, काहे मरहो सवार,

कर क्या मेरे चित वे होए, अपना चित व्यहार करे जो मेरे चित ना होए। महला तीजा।

कबीर काया काची करवी, केवल काची तात। साबत रखे ता राम पाज, नाहे ता बिनठी बात। कबीर के सो कुकी है, ना सोई है आसार। रात दिवस के कूकने, कबहू के सुने पुकार। कबीर काया कजली बन पया, मन कुंचर मैं मंत। अंकस ज्ञान रतन है, खेवट बिरला संत। कबीर राम रतन मुख कोथरी, पारखे आगे खोल। कोई आए मिले गो गाह की, ले गो महंगे मोल। कबीर राम नाम जान्यो नहीं, पाल्यो कटक कुटंब। तंदे ही मह मर गयो, बाहर पई ना बंब। कबीर आखी केरे माटुके, पल पल गई बिहावे। मन जंजाल ना छोड़ई, जम दिया दमा माया। कबीर तरवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग। छाया रूपी साध है, जिन तजिया बाद विबाद। कबीर ऐसा बीज बोए, बारह मास फुलंत। शीतल छाया गहर फल, पंखी केल करंत। कबीर दाता तरवर दया फल, उपकारी जीवंत। पंखी चले दे सावरी, बिरखा सुफल फलंत। कबीर साधु संग प्रापति, लिखिया हुए ललाट। मुक्त पदार्थ पाई है, ठाक नायब घट घाट। कबीर एक घड़ी आदि करी, आदि हूं ते आद। भगतन सेती घोसटे, जो कीने सो लाभ। कबीर पांग माछली सुरा पान, जो जो प्राणी खाहे। तीर्थ व्रत नेम किए, ते सबेर सातल जाहे। नीचे लोए अन कर रहो, ले साजन काट माहे। सब रस खेलो पी सो, किसी लखावो नाहे। आठ जाम चौसठ करी, तो निरखत रह जियो।

सुन सखी पिय मह जियो बसै, जी मह बसै के पियो। जियो पियो बुझो नहीं, काट मैं जियो के पियो।

अर्ज उर्ज कै पाच मुआ चारो बेद हो माहे। हर है खांड रेत मह बिखरी, हाथी चुनी न जाए। कह कबीर गुर भली बुझाई, कीटी होए कै खाए। कबीर जो तोहे साध पैराम की, शीश काट कर गोए। खेलत खेलत हाल कर, जो किश होए ता होए। कबीर जो तोहे साध पैराम की, पाके से ती खेल।

कबीर जो गृह करहे ता धर्म कर, नाही ता कर बैराग। बैरागी बंधन करे ताको बड़ो अपहाग। श्लोक शेख फरीद के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जित दिहाड़े धन वरी,

सींगा खड़ी। चला दुनिया पत बाने उठाई पोटली किथे वंजा घत। किज ना बुझे किज ना सुझे दुनिया गुजी पाहे। साई मेरे चंगा कीता नाही ता हम्पी दजाया हे। फरीदा जे जाना तिल थोड़े समल बुक परी। जे जाना सोह नंडड़ा ता थोड़ा मान करी। जे जाना लड़ छिजना पीड़ी पाई गंड। तैं जे वड़ मैं नाहे को सब जग डिठा हंड। फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिखना लेख। अपनड़े ग्रीवान मैं सिर नीवा कर देख। फरीदा जो तै मारन मुकिया तिना ना मारे कुम। अपनड़े घर जाइए पैर तिना दे चुम। फरीदा जा तौ खटन वेल ता तू रत्ता दुनी स्यों। मर्ग सवाई नी हे जा भरिया ता लदे आ। देख फरीदा जो थिया दाड़ी होई पूर। अगहों नेड़ा आए आ पिछा रहिया दूर।

0: एहो परम पयाला खसम का जय भावे तै दे।
1: फरीदा जन लोयन जग मोहया से लोयन मैं डिठ कजल रेख ना सेंदया से पंखी सुए बहेठ। फरीदा कू केंदे आ चां केंदे आ मत्ती दे दे आ नित जो शैतान वंजाया से कित फेरा चित। फरीदा थियो पवाही दब जे साई लोड़े सब एक छिजै ब्याल ताड़ी है ता साई दे दरवाड़ी है। फरीदा खाक ना निंदी है खाकू जेड़ ना कोए जीव दया पैरां तले मुइयां उपर होए। फरीदा जा लब ता निहु क्या लब ता कूड़ा ने हो किचर झत लंघाई है छप्पर टुटै में हो। फरीदा जंगल जंगल क्या पवै वन कंडा मोड़े हे वसी रब हे आली है जंगल क्या टूडे। फरीदा इन्नी निकी जंगी है थल डूंगर पवियोम अज फरीदा कुजड़ा सै कोहां थी ओम।

फरीदा सकर खंड निवात गुड़ माख्यो मांजा दुध सबे वस्तु मिठियां रब ना पुजन तुद। फरीदा रोटी मेरी काठ की लावण मेरी भुख जिन्ना खादी चोपड़ी घने सहन गे दुख।

अज ना सुती कंत स्यों अंग मुड़े मुड़ जाए जाए पुछो डोहागणी तुम क्यों रहण विहाय।

गई कथूरी गंद, जोबन जांदे ना डरा जे शाह प्रीत ना जाए, फरीदा किती जोबन प्रीत बिन सुख गए कमलाए। फरीदा चिंत खटोला वाण दुख, बिरह विशावन लेफ, एहो हमारा जीवना तू साहिब सच्चे वेख। बिरहा बिरहा आखिया बिरहा तू सुल्तान, फरीदा जित तन बिरहो ना उपजै सो तन जान मसान। फरीदा ए विस गंदला तरिया खंड लिवाड़,

कूड़ा सौदा कर गए गोरी आए पे, फरीदा खिंथड़ में खाए गलियां, जिंद न काई मेख वारी आपो अपनी, चले मसाइक सेख। फरीदा दोहो दीवी बुलंदया, मलक बैठा आए, गड़ लीता कट लुटिया, दीवड़े गया बुझाए। फरीदा वेख कपाह जेथिया,

छपड़ी आए उलथे हंज, चुंजू बोड़न ना पीवे उड़न संधि डंज। हंस उडर कुदरै पया लोक विडारन जाए, गहला लोक ना जानदा हंस ना कुदरा खाए। चल चल गईयां पंखियां जिनी वसाए तल, फरीदा सर भरिया पी चल सी थके कवल एकल। फरीदा इट सिराने पोए सवन, कीड़ा लड़यो मास केतड़े आ जुग वापरे इकत पया पास। फरीदा पन्नी घड़ी सवन वी टूटी नागर लज, जो सज्जन पोए भार थे से क्यों आवै अज। फरीदा बे निवाजा कुत्या ए ना भली रीत,

बात है। लम्मी लम्मी नदी वह कंदी के राहित, बेड़े नु कपर क्या करे जे पातन रह सुचेत। फरीदा गली सो सज्जन वी एक ढूंढेंदी नाल हां, तुखां ज्यों माली कारण तिन्ना मां पिरी।

तप सत संतोख पेख दर्शन गुरु सिखा शरण परे ते उबरे छोड़ जमपुर के लिखा। भगत पाए भरपूर हृदय उचरै कर तारै गुरु गौहर दरियाओ पलक डुबन ता तारै। नानक कुल निमल अवतरयो गुण करतारै उचरै गुरु अमरदास जिन सेवियो तिन दुख दरिद्र प्रहर परै। चित चितो अरदास कहो पर कह पे ना सको सर्ब चिंत तुझ पास साधु संगत हो तको तेरा हुक्म पवै निशान तो करो साहिब की सेवा। जब गुर देखै शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा। अगम अलख कारण पुरख जो फरमावै सो कहो गुरे अमरदास कारण करण जिव तू रखे तिव रहो। भिखे के गुर ज्ञान अर ध्यान तत् स्यों तत् मिलावे सच सच जानिए एक चितै लिव लावे। काम क्रोध वस करै पवन उडंत न धावै निरंकार कै वसै देस हुक्म बुझ बिचार पावै। कल माहे रूप करता पुरख सो जाणै जिन किश कियो गुर मिलियो सोए पिखा कहै सहज रंग दर्शन दियो। रहियो संत हो टोल साध बो तेरे डठे सन्यासी तपसी मुखोए पंडित मिठे बरस एक हो फिरियो किन्हैं नु परचो लायो। कहत्या कहते सुनी रैत को कुसी न आयो हर नाम छोड़ दूजा लगे तिनके गुण हो क्या कहो। गुर दई मिलायो पिखिया जिव तू रखै तिव रहो। पहर संवाद सुनाओ ज्ञान है आसन चढ़ियो त्रम तनख कर गहयो भगत सीला सर लड़ियो। पै नृपो हर अटल मन शब्द गुर ने जागड़ियो। काम क्रोध लोभ मोह अपत पंच दूत बखंडियो।

दल जितो इव जुद कर। कनहर बूंद बसो रोमावल कुसुम बसंत गिनंत न आवै। रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै। रुद्र त्यान ज्ञान सतगुर के कबजन पालयो ना जो गावै। भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बनया वै। सवैये महले चौथे के एक ओंकार सत गुर प्रसाद। एक मन पुरख निरंजन त्यावो गुरप्रसाद हर गुण सत गावो। गुण गावत मन होए मेगा सा सतगुर पूर्जना की आसा। सतगुर सेव परम पद पायो अबनासी अभिगत ते आयो। तिस भेटे दर दर ना चंपै काले सहार सदा तास चंपै। तिस भेटे दर दर ना चंपै काले सहार तास गुण जंपै। जंपो गुण बिमल सुजन जन केरे अमय नाम जाको फुरिया। इन सतगुर सेव शब्द रस पाया नाम निरंजन उरतरिया। हर नाम रसक गोबिंद गुण गाहक चाहक तत् मत सरे। कव कल ठकुर हरदास तने गुर रामदास सर अपर परे। छुटत प्रवाह में अमरा पद अमृत सरोवर सद प्रया। ते पीवै संत करे मन मज्जन पुब जिनों सेवा करिया।

बाचा कर समर अंत तुझे तिर दुख दरिद्र मिट्यो जो खिणं कर्म कर तो दरस परस पारस सारु बल भट जस गायो श्री गुरु रामदास ज्यो जय जग मैं तै हर परम पद पायो जी सतगुर सिमर अंत नैन के तिमर मिटै खिना जी सतगुरु सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिना जी सतगुरु सिमरंत जी की तप्त मिटावे जी सतगुरु सिमरंत रिद सिद्ध नव निद पावे सोई रामदास गुर बल पाणा मिल संगत तन तन करो जिहे सतगुर लग प्रभ पाईऐ सो सतगुर सिमरो नरो जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत न छोड्यो पास तांते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारो तुख दरिद्र अंधियार को नाश कव कीरत जो संत चरण मुड़ लग है तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जिवें अंगद अंग संग नानक गुर तिम गुर अमरदास कै गुरु रामदास जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निस्बासुर हर चरण निवास ताते संगत सगन पायो पमन तुम्मल यागर प्रगट सुबास त्रू प्रहलाद कबीर तलोचन नाम लैते उपजो जो प्रगाशो जे पिखत अत होए रास मन सोई संत सार गुरु रामदास नानक नाम निरंजन जान्यो कीनी भगत प्रेम लिव लाई तांते अंगद अंग संग भयो सायर तिन शब्द सुरत कीनी वरखाई गुर अमरदास की अकत कथा है एक जी कछ कही न जाई सोडी सृष्ट सगल तारण को अब गुर रामदास को मिली बढ़ाई

भेद विभेद न जान बियो, पर तच्छ हृदय गुर अर्जन के हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो। जब लो नहीं पागल लार उदय, तब लो भ्रम ते फिर ते बहुतायो। कल कोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हो मिट है नहीं रे पछतायो। तत विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। जपयो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ नायो। काल समुद्र भय रूप, प्रगट हर नाम उदाहरण। बसै संत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारण, निर्मल पेकिया पार तास बिनि अवर न कोई। मन बच जिन जानेयो, भयो तेह सम सर सोई। तरण गगन नव खंड में, जोत स्वरूपी रहो पर। पन मथुरा कश भेद नहीं, गुर अर्जन पर तख हर। अजय घंग जल अटल, सिख संगत सबना आवै। नित प्राण बाचियां वेद ब्रह्मा मोगावै। अजय चबर सिर ढुलै, नाम अमृत मुक लियो। गुर अर्जन सिर शतर, आप परमेश्वर दियो। मिल नानक अंगद अमर गुर, गुर रामदास हर पै गयो। हर बंस जगत जस संचरियो, सो कवन कह श्री गुर मोयो। देवपुरी मैं गयो, आप परमेश्वर पायो। हर संघासन दियो, श्री गुरु तां बैठायो। रहस कियो सुरदेव तोहे, जस जय जय जंपै। असुर गए ते पाग, पाप तन पीतर कंपै। काटे सो पाप तिन नरों के, गुर रामदास जिन पायो। शतर सिंघासन प्रथमी, गुर

ओ तंगी पै ओहरी कहरी गंभीरी सस्सड़ सुइया कव करी निवण न जाय थणी। गच जे लगा गिड़बड़ी सखिए तौलहरी से पी टेंदे डेट मैं मुंद ना गर्भ थणी।

नानक भी परवासु कीर्तन मिटई रामा। लाहौर शहर जहर कैर सवा पैर। महला तीजा। लाहौर शहर अमृत सर सिफती दा घर। महला पहला। उदो सा है क्या निशानी,

वाला जैसे ती मेरा संग जित डिठ तन पर फड़ चढ़ चवगण वन्ना राज न कोई जीव्या पहुंच न चलिया कोए ज्ञानी जीव सदा सदा श्रुति ही पत होए सरफ सरफ सदा सदा एवें गई विहाए नानक किसनो आखिए विण पुछिया ही लै जाए दोष न दियो राय नो।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला नामा गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म आकार थकीन कहो नानक हर पज मना जे बेद जल को मीन बेघन सो काहे रचियो निमख न हो अदास को नानक पज हर मना पर न जम की भास तर न पोयो ही गयो

बोध जात है बीत, बिरद पे ओ सूज नहीं, काल पहुँच हो आन, कौ नानक नर भाव रे, क्यों न पजे भगवान, तन दारा संपत सगल, जिन अपनी कर मान,

उपजय बिन सनीत जाग रचना तैसे रची कौ नानक सुन मीत प्राणी कछु न चेतहि मद माया कै अंध कौ नानक बिन हर भजन परत ताहे जम बंद जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले

मन कौ नानक बैन हर भजन बिरता जन्म सरान जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम ते जान हर अंतर नहीं

मद माया कै अंद कहो नानक हर भजन बिन परत ताहे जम बंद सुख में बहु संगी पै दुख में संग न कोय कहो नानक हर भज मंदा अंत सहाई होए जन्म जन्म परमत फेरियो मिट्यो न जम को त्रास कहो नानक हर भज मंदा निरपै पावै बास जतन बहुत मैं कर रेओ मिट्यो न मन को मान दुर्मत स्यो नानक फदेओ

जो अनहोनी होए ए मार्ग संसार को नानक तेरे नहीं कोए जो उपजो सो बिन सह परो आज कह काल नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल दोहेरा बाल छुट क्यों बंधन पर कजो न होते यो पाए कौ नानक आबे ओट हर गज जो हो सहाय बल हो वहा बंधन छुटै

जैसे मरत संकट मिटाए दर्श तोहारो ए राम नामे और मैं गयो जाके सम नहीं कोए। जैसे मरत संकट मिटाए दर्श तोहारो हो ए मुदावणी

माला राग एक संग पंज प्रगण संग लापे अठो नंदन प्रथम राग पैरो वै कर ही पंज राग नि संग उचारई प्रथम भैरवी बिलावली पुनिया की गा वै बंगली पुन लेके गई बेबारी है पैरों की पंचो नारी पंज मर्द सासन आवै बंगाल मद माधव गावै ललत बिलावल गावे अपनी अपनी पांत अष्टपुत्र भैरव के गावे गायन पातेरे दुधिया मालक उसके लापै संग रागनी पंचो थापै गुण करी और देव गंधारी गंधारी सूती उचारी तनाश्री है पांचो गाई मारा को साक संग लाई मारू मस्तंग में वारा पर बिलचन को उसके अबारा खो घड़े पौर नद गाये अष्ट माल को साक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंच नार संगा सोता उठे तान कलोहल गाय तार मिला वही ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर सहाई सर श्री लह पार जा संग लाई पंचो आर जा सुरमानंद पास करे आये चंद्र में मंगलन सहाय सरस बानो आए बनोदा गावे सब बसंत कमोदा अष्ट पुत्र में कह सवारी पुन आई दीपक की बारी काशली पट मंजर ही टोडी कई अलाप का मोदी और गुजरी संग दीपक के थाप कालंगा कुंतले ओ रामा कमल को चंपक के नामा गौराव कांला कल्याण अष्ट पुत्र दीपक के जाना सब में सिरा वह गावे पांचो संग बरंगण लावे बैरारी करनाटी तरी गौरी गावे आसावरी ते पास सिंधरी लापी श्री राग सिंह पांचो दापी सालू सारग सागरा और गुण गंभीर अष्ट पुत्र सिरा कह गुण कुंभ अमीर खष्ट में गावे गावे पांच संग बरंगण लावे सोट गुण मलारी तुनी पन गावे आसा गुन गुने ऊंचे सुर सोह पुन की नी मेघ राग सिंह पांचो चीनी बैरा दर गई दर के दारा जबली तनड़े ओ जल तारा पुन गावे संग करे ओ श्यामा मेघ राग पुत्र निके ना।

तेरी नाम मन वसावै, नाम जिनके मन वसे आवा जे शब्द गनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही करते रहे, साचा नाम मेरा आधारो साज नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाईया कर शांत सो मन है वसया, जिन शाह साहब पुजाईया सदा कुर्बान किया गुरु विटों जे दिया वड़ियाईया। कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो वाजे पण शब्द कर सुभागै, कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया, भाई दो तुद वस कीते काल घंट गमारिया।

का नाम हुआ संतोषा, जेहे पैडय मंद कराहर का नाम संगुचियारा, जहाँ पन तेरा को ना सियानु हर का नाम ते नार पछानु, जय मा प्यान तत्पो काम ते हर के नाम की तुम ही परिश्याम, जहाँ त्रिखा मन तुझे करख ते नानक हर हर अमृत बरख, भक्तना की बर्तन नाम संतना के मन विश्राम, हर का नाम दास की ओट हर के नाम तेरे जनकोट, हर जस करत संतन रात हर हर उख साध कुमार, हर जन के हर नाम दान पार ब्रह्म जन की नो दान, मन तन रंग रते रंगे कै नानक जन कै बिरत कै, हर का नाम जन को मुक्त जोगत हर के नाम जन को ते भुगत, हर का नाम जन का उपरंग हर नाम जपत का परे न भंग, हर का नाम जन की बड़ियाई हर के नाम जन सो पाई, हर का नाम जन को भोग जोग,

हर हर जन के उठ ताणी हर प्रताप जन अपन जानी ओत पोत जन हर सराते सं संवाद नाम रसमाते आठ पहर जन हर हर जपहर का पद परणी छपै हर की भक्त मुक्त बो करे नानक जन संग किते तरे पार जाते हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लता नाम की महिमा संत रिद वसै संत प्रताप दुर्सव नसै संत का संग बट भागी पाए संत की सेवा नाम त्याई है नाम तुल कछ अबर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए सलोक बहु सार बहु सिमृति पिख सब टंडोल पूज सनाई हर हरे नानक नामे मोलाट पदे जाप ताप ज्ञान सब त्यान खट शास्त्र स्मृत बख्या जोग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सो त्यापन मध्य क्रिया अनेक प्रकार के बोजतना पुन दान होमे बोरतना शरीर कटाए होमे कर राति वर्त नेम करे बुभाते नहीं तुर राम नाम विचार नानक मुख नाम जपी अखबार नौ खंड प्रथमी फिराचर जी पै महादास तपीसर थी वै अगन माहे होत पुराण कनक असब हैबर भूमदा निवली कर्म करे बुआसन जैन मार संजम साधन निमख निम करसी कटावै तोपी होमै मैल न जावै हर के नाम समसर कछनाय नानक गुरमुख नाम जपत गत पाए मन कामना तीर्थ दे छुटै गुरु को मन मंते फुटै सोच करे दिन स रात मन की मैं न तंते जात इस देही को बो साधना करे मन ते कबहू न बिख्या टरै जर तुवै बो दे अनीत सुध काम काची भीत मन हर के नाम की महिमा उच नानक नाम दरे पतत बमूच बहुत सियानप जमका भौ पिया पियनक जतन कर त्रिसन न त्रापै पेख अनेक अग्नि बुझै कूट पा दरगन सिजै छूट सनाई ऊ प्याल मोय पिया पे माया जाल अवर करतू सगली जम डान कुवन भजन बिनतली मान हर का नाम जब दुख चाय नानक बोले सह सुपाए चार पदार्थ जे को मांगे साजना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे जे को अपनी सुबह लूरै सार संग एहो मैं छूरै

कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं, जाबे आपा पर का मिट गया, जात देखो तत तू। वाहिगुरु जी,

रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरिया जिन नाम ते भुए पार थिए रहाओ, आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से।

गुरु सवारी, गुरु प्यारी, अत सत्कार योग साध संगत जी, जितने भी आप सतगुरों के हजूर जिथे हफ्तावारी दीवाना की हाजिरी भर रहे हो, उथे अज विशेष तौर पर जो इस गुरद्वारा साहब की नवी इमारत बननी है उस दे नींव पत्थर भी रखे जाने ने। सो ये कार्ज गुरु का है और गुरु के चरणों में अरदास है कि सतगुरु आप ही ये सारे कार्ज रास करन और ये कार्ज सवार लैन। और ये जो पावन बचन आपने श्रवण किए, संतां के कार्ज आप खलोया, हर काम करावण आया राम, ये पावन बचन जिस दिन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे जिन्हों का नाम पहला पोथी साहब है और जिन्हों का पहला प्रकाश श्री हरिमंदर साहब विखे होया और बाबा बुढ़ा साहब ब्रह्म ज्ञानी महापुरखां नूं पहले हैड ग्रंथी श्री हरिमंदर साहब जी दे होण दा सन्मान प्राप्त होया। जदों भाई साहब भाई संतोख सिंह होरां ने यह वचन आखे कि धन गुरु अर्जन साहब जी ने हुक्म कीता कि बुढ़ा साहब खोलो ग्रंथ, लियो आवाज सुने सब पंथ, पूरे पंथ नूं आवाज सुनाओ, आवाजा सुनाओ, हुक्मनामा सरवण करवाओ। और ये पहला हुक्म जो बाबा बुढ़ा साहब ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे विचों लैणा कीता, ये पहला हुक्म आया सी सूही महला पंजवां, संतां के कार्ज आप खलोया, हर काम करावण आया राम। सो आप सारे वडभागी हो, अज इत्थे भी कार्ज गुरु दा है, ये गुरु ने कार्ज रास करने ने। और सतगुरु दे चरणा विच ही बेनती है कि बिघन ना को लागता गुरपै अरदास। जदों गुरु दे कोल अरदास करके कोई भी कार्ज की आरंभता की जाती है, उस कार्ज विच गुरु आप आ जाते हैं और गुरु आप साक्षात हो करके वो कार्ज रास करते हैं। और सह वचन करते ने विच करता पुरख खलोवा, जदों करता पुरख जिस कार्ज विच आप खलो जान फिर उत्थे कोई कमी रह नहीं जाती। साहब कहते ने विच करता पुरख खलोवा, वाल ना विंगा होवा, मज्जन गुर आंदा रासे, जप हर हर किल बिखनासे। संतो रामदास सरोवर नीका, जो नावै सो कुल तरावै, उधार हुआ है जी का। जेड़ा इस पावन सरोवर दे अंदर इशनान करदा, जिथे तन दे रोग जांदे ने उथे बाणी सरवण करदा, बाणी सरवण करन दे नाल मन दे रोग दूर होंदे ने। सो बड़े प्यार विच आप सारे जुड़ बैठे हो। सो आओ एक बचन आप दे हुक्म अनुसार ये शब्द गायन होंदा है। और अरदासिया जी भाई साहब भाई गुरचरण सिंह जी अरदासिया श्री हरिमंदर साहब वो भी पहुँचे ने, उन्होंने अरदास सतगुरां दे चरणा विच करनी है और वो भी पहुँचे ने सतगुर कृपा करन। आप सारी चढ़ती कला दे नाल ये पावन बचन गा के फिर आपां समाप्ति करांगे।

बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोबिंदन सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जैसा।

0: शरण नानक तिन साध बलिहारे, प्रभ के सेवक प्रभ आप सवारे। शरण नानक तिन साध बलिहारे, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: गुरु सवारी साध संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कोटांत कोटांत धन्यवाद है साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का। अरदास बेनती हुई हुक्मनामे की असीस बख्शिश की है। आओ अरदास करिए कि हुक्मनामे के भावअर्थ जो हैं साढ़े सब के हिरदे में वस जाण, तो असी अपने जीवन में जो है गुरबाणी के अनुसार चलाने का यतन कर सकीए। हुण प्रसाद वरताया जाएगा ते उस तो उपरंत आपने सत्कारयोग पांच प्यारियां की अगवाई दे हेठ बड़े अदब सत्कार दे नाल बाहर एंड दे उत्ते पार्किंग लॉट दे जो है उस कंस्ट्रक्शन साइट ते जाना, ते उत्थे जाके फिर जो जिस कार्य वास्ते सारा प्रोग्राम रचिया गया उत्थे आपां ने कट लाउण दी जो टक लाउण दी सेवा करके, ते उस तो बाद जो नैक्सट स्टैप्स जो कंस्ट्रक्शन है वह शुरू होने लई जो गुरु महाराज ने सानू बख्शिश कीती है आपां ने अगला काम जोड़ा वह शुरू कर देना। तो एक बार फिर सोसाइटियां दे विच जिहड़े साडे पास लेट ना आए हैं उन्हां दे विच गुरुद्वारा श्री नानकसर साहब तो जो सोसाइटी पहुँची है उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह सारिया सोसाइटियां दा एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद सारी संगत दा, ते खास करके जिहड़ा साडा पंजाबी मीडिया ते दूसरा मीडिया इत्थे है उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद। साढ़े प्रोफेसर धालीवाल साहब भी इत्थे पहुँचे हैं उन्हां दा भी बहुत धन्यवाद। तो जो साडा मीडिया है वह साडी रीढ़ की हड्डी हुंदा है, तो ये जदों भी असीं कितें आवाज मारीए जरूर गुरद्वारा साहब विखे हमेशा पहुँचते हैं, तो नाल साडा जो है जिस तरह भी जो है साडा साथ भी देते हैं। सो एक बारी ये मीडिया वाले वीरां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपां सारयां ने हुण जिस तरह पहला अनाउंस किया कि पांच प्यारियां की अगवाई दे हेठ आपां सब ने उत्थे साइट दे उत्ते जाना है, तो कृपा करके जिस तरह पहला बेनती की सी आपां थोड़ा जिहा धीरज दे विच रह के उत्थे पहुँचना, जे फोटो वगैरह तुसीं खिचाउणियां हन उन्हां लई आपां थोड़ा जिहा टाइम जरूर कढ लवांगे। तो जिहड़ी हुण सैरेमनी है डैथ वी शुड अबलाइज एज मच एज वी कैन। सो इन्हां शब्दां दे नाल सारियां सेवां निभाउंदिआं इत्थों ते अगेन ऑल थ्री गवर्नमेंट्स रिप्रजेंटेटिवज आर हीयर एंड वी थैंक दैम सो मच एंड इन द फ्यूचर वी विल मीट अगेन। सो आओ सारे बड़े अदब सत्कार दे नाल उत्थे वाहिगुरु दा जाप करदे होए उत्थे पहुँचिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।